आया शमशता हमको पंगा निष्मला की केतम हम कथे मवी कला हम आया हम आया चमाया वो चमा की आय चमाया वो चमल मुखी दो कृष्ण ना कमी वो हम आया हम आया ए मोय मी वो ए मोय फूक